0: 770021.
1: Okay, note कर लिया. इस ऑपरेशन का कोड वर्ड होगा डेली फ्रेंड. और याद रखिए, अगर मेरे साथ किसी तरह की चालाकी करने की कोशिश की गई तो ये कीमती इंफॉर्मेशन किसी दूसरे मुल्क को भेज दी जाएगी.